गुर सिक्का मन बाधाया जन्म धाया कर जन्म धाया कर जन्म धाया कर जन्म धाया कर जन्म धाया कर जन्म धाया कर जन्म धाया कर जन्म धाया कर जन्म धाया कर जन्म धाया कर जन्म धाया कर जन्म धाया कर जन्म धाया कर जन्म धाया कर जन्म धाया कर जन्म धाया कर जन्म धाया कर जन्म धाया कर जन्म धाया कर जन्म धाया कर जन्म धाया कर जन्म धाया कर जन्म धाया कर जन्म धाया कर जन्म धाया कर जन्म धाया कर जन्म धाया कर जन्म धाया कर जन्म धाया कर जन्म धाया कर जन्म धाया कर जन्म धाया कर जन्म धाया कर जन्म धाया कर जन्म धाया कर जन्म धाया कर जन्म धाया कर जन्म धाया कर जन्म धाया कर जन्म धाया कर जन्म धाया कर जन्म धाया कर जन्म धाया कर जन्म धाया कर जन्म

माफ करनी बाणी सचखंड विच प्रवान करनी पातशाह बाणी दा महतम अपनियां साजियां निवाजियां संगतां नूं बख्श के निहाल करना कारज रस करने यात्रा सफली करनी

नानक दास तेरी शरणाई वाहिगुरु सदा सदा बल्ले हारे सदा सदा बल्ले हारे सचिया।

समूह ट्रस्ट दे सेवकां दे सिर ते मेर प्रयात रखना दरो करो प्यारी गुरसिखी सेवा सिमरन दी दात बख्शनी चढ़दी कला बख्शनी कारदरा सरमैदान फतेह करना श्रीमान संत बाबा।

बिन सैछन मैं मीता, जह प्राणी हर जस कहयो, नानक तेह जग जीता, जह घट सिम

प्रबल चांड कौ साख उभारा खौ खटौ पहरानत गाए अष्टमाल कौ साख संग लाए पुन आयो हिंडोल पंच नार संग अष्ट सो

राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम

रहे ना कोई ख्वार होए शाम मिलेंगे बजे शाम जो होए उड़के सुबह मिले इसकी कर गुड़ा बसा ढंका बाजे भले गान है कंगमदार चतर जागर भरती चतर जागर भुगते स्वयं बास बंकर बदा सर्व जुगते दुकालंग प्रणासी दयालंग स्वरूपे सदा आंगे संगे आप अंगम विभूते देव देखो आप दर्शनान गुरु गोविंद सिंह श्रीकाल गुरु जी सहाय दरबार में तेरो दरबारा चाच खंड वसाय निरंकारा लक्ष्मी खड़ी तुमरे दरबारा सर्व देवते करम सकार

हमरी करो हाथ दरछा, पूर्ण होए चित की इच्छा। तव चरणन मन रहे हमारा, अपना जान करो प्रतपारा। हमरे तो

सेवक सेख सब है कर तारा मोर अच्छा निज कर दे करिए सब बैरन को आज संगरिए पूरन होए हमारी आशा तोर भजन की रहे प्यासा तुम्हें छाड़ कोई अवर ना ध्याऊं जो बर चाऊं सो तुम ते पाऊं सेवक सिख हमारे तारी है चुन चुन सत्र हमारे मारी है आप हाथ दे मुझे उबरी है मरन काल का त्रास नवरी है हू जो सदा हमारे पछा श्री अस धुज ज्यों करी यह रक्षा राख ले हो मुहे राखन हारे साहिब संत सहाय प्यारे दीन बंद दुष्टन के हंता तुम हो पुरी चतर दस कंता।

विद सजा प्रथम संसारा एकै रूप अनूप सरूपा रंक भयो राव कही भूपा अंडज जेरज सीतज कीनी उत्पज खान बहर रच दीनी काहूं फूल राजा है बैठा काहूं सिमट भयो शंकर कैठा सगरी सृष्ट दिखाए अचंभव आद जुगाद स्वरूप स्वयंभव अब रक्षा मेरी तुम करो सिख उबार असिख संघरो दुष्ट जिते उठवत उत पाता सकल मलेच करो।

तिनके दुष्ट दुख तोहे मरे, पुरख जवन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सब टारे, जो कल को एक बार धिया है, ताके काल निकट नह है, रक्षा होए ताहे सब काला, दुष्ट अरिष्ट टरे तत्काला, कृपा दृष्टन जाए निहर हो, ताके ताप तनक मह हर हो, रिद्ध सिद्ध घर मु सब होई, दुष्ट छा छुए सकै न कोई, एक

दुगालं प्रणासी दयालं स्वरूपे सदा अंग संगे भंगं देखते गो फते सुदेत अजनान गुरु गोविंद सिंह जी काल पुरजी सहाय दरबार में तेरे दरबार सतखंड सह लक्ष्मी खड़ी तुमरे दरबार गुरु नानक गुरु गोविंद सिंह जी पूर्ण गुरु अवतार जगमग ज्योत विराज रही श्री अब चल नगर पार सतखंड के दरबार।

0: जोगे सुंदा दलख नाम करतार
1: सुख मूर्त नाम जन काया काया का सत्यामर सुत उपज दे।

जिन करते करना किया चिंता फिक्रनीता। सो करता चिंता करे जिन उपाया जग, तिजोहारी स्वस्थ तिस।

सब को सच मावेर करे प्रपूर राम नाम दिवा मैसूर नाय लिए प्राचदाय नानक तो मुखंत्र पाहे जुज में जोर चली चंद्राल कान कृष्ण जादन पया पार जद को पीले आया बिंद्रा